करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

హలో ఫ్రెండ్స్, డోగ్రి రేడియో సుందా మతామత స్వాగతం. మే అవుతుంది ఆర్జే నేహా శర్మ, డోగ్రన్ సోల్. తే మేరా జిల్లా డుగ్గర్ ప్రదేశ్ హై, ఓ వీర్ తే వీరాంగనాయ కన్నే ప్రోచే రా హై. इं के एक डुग्गर प्रदेश के शूर वीर है जिन्हें की दुश्मन ने भी सलाम किया. उनकी जेड़ी वीर गाथा वो अज भी आर्मी च मिलिट्री च लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर जरूर शेयर करते हैं. तो जिन्हें भी इतिहासकारों ने इन्होंने पता लगी गए होना है कि ये कौन है. जिया कि मैं तुसें आख्या कि वह पहले शूरवीर है जिन्हें दुश्मन ने सलाम किया. उनकी समाधि दुश्मन के इलाके च बनी ठीक युद्ध के बाद. ते ए जेड़ा गौरव है अपने आप विच, ए सिर्फ इतिहास च इक के बंदे गीत होएदा है. ते ए बंदा कौन है सोचो सोचो. तुस पहले सुनो ए मिठा हरा गीत, ओदे बाद मैं दसनी आ मैं कुंदे गल करानी आ.

बैक फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुनदा मदा मदा स्वागत है। इतिहास गल करा दे ही डुगर प्रदेश दे शूर वीर जिंदा ना है जनरल जोरावर सिंह जी। इंदा जन्म 15 अप्रैल 1786 होया हा। ये इंदू राजपूत फैमिली जन्मे है। उन प्रेजेंट चो इलाका पौंदा है हिमाचल प्रदेश। इन्हें बड़े निक्के होंदे गे घर छोड़ी दिता हा। इन्हें बड़े गे निक्के होंदे तलवार चलाना धनुष विद्या ये सब सीखी लेता हा। ते लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि निका टूमर च कोई इन्ना कौशल क्यों हो सकता है। ते इंदे उसी कौशल ने उसी शौर्य ने इन्हें राजा गुलाब सिंह हुंदे आर्मी च भजाई दिता। इंदी कार्य क्षमता इन्नी अच्छी ही कि सारे बड़ी तारीफ की। इन्हें बड़ी ही जल्द उस आर्मी का जनरल बनाई दिता गया। ते गुलाब सिंह जी ने इन्हें पूरा कार्यभार सौंपोड़िया रियासी इलाके का अगे पिछे के इलाके का। बस फीक है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुंदा स्वागत है। तो मैं गल कर रहा थी जनरल जोरावर सिंह दे शौर्य दी। ते इतिहासकार दस दिन कि शिव भक्त है बहुत बड़े, ते इंदा मन हा जेड़ी कैलाश मानसरोवर स्थली शिव जी भगवान हुंदी ओह भारत देश दी सीमा के अंदर गे होनी चाहीदी है। इसी मंशा लई इन्हें 1841 पर तिब्बत पर कूच करी दिता। आखदे ने कि लड़ाई बड़े महीने चली, साड़ी जीत होनी तो पक्की गए ही, पर बर्फीली हवाएं ते मौसम ने ते खराब औजारे उन्ना साथ नहीं दिता। खाने पीने की कमी भी होई गई, उपरा मौसम की मार ये नहीं पई कि इंदी टोली दे बड़े सारे बंदे जान देनी पई, ते उन्दे चा एक ए भी है। पर आखदे ने तिब्बत के लोग अज भी गल करते ने कि बड़े शौर्य वीर ते बड़े गे पराक्रमी है। इसे आस्ते उस स्थान पर अज भी इंदी एक समाधि बनाई दी गई है। तो इत्थे दे लोग अज भी कोई न्याणा जमदा है तो उत्थे मत्था टकाने की लई जांदे ने। आखदे ने कि अस ये प्रार्थना करने हैं कि साड़ा जेड़ा भी ये न्याणा है ये उन्दे आंगर के पराक्रमी वीर ते शूर वीर बने। तो दोस्तों, ये अपने आप च एक मिसाल है। उम्मीद है तुसी पसंद आई हो मेरा अज का एपीसोड। मैं फिर परती आ गई, उम्मीद दियो इजाजत, नमस्कार।
1: હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં ને? હું છું તમારી મજાની મિત્ર માનસી. અનેકતા મે એકતા કહેવત ભલે ને આપણે સમગ્ર હિન્દુસ્તાન માટે વાપરતા હોઈએ, પણ માત્ર ગુજરાત માટે પણ એ વાત સાચી જ પડે છે. ગુજરાત રાજ્યને વિવિધ પ્રકારના ભૌગોલિક ક્ષેત્રોમાં વિભાજિત કરી શકાય. અલગ અલગ બોલી, પહેરવેશ અને ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓમાં વસતા ગુજરાતીઓએ સાચે જ વિવિધતામાં એકતા કહેવત પરિપૂર્ણ કરી છે. મિત્રો, શું તમે જાણો છો કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જીઓગ્રાફિકલ લોકેશન અને ક્લાઇમેટને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતને ઓફિશિયલી કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત એમ 5 ક્ષેત્રોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે? અને એટલે જ તો કહેવાય

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सो बिल्कुल जी, स्वागत है एक बार फिर पंजाबी लहर के इस हिस्से में। मैं थोड़ा अपना मेजबान प्राप्त संधु, मेरे नाल रमेश हशियारपुरी जी पंजाब की धरती तो जुड़े हुए हैं, सो देश दुनिया की खबरों पर झाक पा रहे हैं। सो 905-673-3337 905-673-3337 गल्लांबात हो रही ने। और नाल दी नाल हुण गल करिए महिला राखवांकरण बिल की। रमेश जी, भाजपा वालों पार्लीमेंट के हम फिर तैयारियां खिंचिया जा रही ने कि मुड़ महिला राखवाकरण बिल लैके आया जाए, यह सारी की खबर है जी?
3: संतु जी, ये मसला भारत दियां लोक सभा दियां जिहड़ियां 543 सीटां, वह सीटां बधाई जाण दे नाल सीधे तौर पर मसला जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी मौके की साडी सरकार है, केंद्र वाली सरकार है, उहदा तर्क है कि असी सीटां की गिनती इस करके वधा रहे हैं कि असी भारतीयां औरतां नूं एक राखवांकरण देना है, विशेष राखवांकरण। बाकी जे 543 लोक सभा दीआं सीटां ते इन्नी सीटां दे उपर केवल ते केवल औरतां ही चोण लड़नगियां, वह औरतां लई राखवीआं होणगीआं। हुण इह ते भारतीय जनता पार्टी का तर्क है, केंद्र सरकार च जिहड़ी राज कर रही है इस बिल दे। दूजे पासे उस तर्क के खिलाफ यह तर्क है कि असल विच औरतां दे राखवेकरण दे नां ते एक ते बेलोड़ा बोझ पाया जा रहा जनता ते, सीटां वधाईआं जा रही। दूजा उच तर्क यह दिता जा रहा विरोधियों वाले पासों कि सीटां इस ढंग के नाल वधाईआं जा रही कि जिथे भारतीय जनता पार्टी नूं अपना सूत बैठता है, उन्हां नूं पता है कि साडा वोट बैंक ज्यादा, उत्थे सीटां ज्यादा वध जाणियां है। ते जिथे उन्हां नूं पता है कि इत्थे मैनूं वोटां नहीं पैंदियां, जिवें कुछ दक्षणी भारत दे सूबे है, पंजाब है, उत्थे उह सीटां उस गिनती दे मुताबक नहीं वधणियां। बाकी जिहड़ियां 543 तों 850 सीटां होणियां आ, उहदे विच पंजाब ते दक्षणी भारत दे कई सूबियां नूं घाटा पैणा आ। ते जिहड़े कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी दे प्रभाव वाले कुछ सूबे ने, उहनां नूं फायदा होणा आ। उहदा इक कारण इह वी मन्निया जांदा कि उत्थे आबादी वध है, उत्थे पंजाब वर्गे सूबिया का इतराज यह है कि साडा कसूर है जे असी आबादी नूं कंट्रोल रखे कि तुसीं इहदी सजा दे रहे हो। विरोधी पार्टियां ने बीते समय च जदों भाजपा बिल लैके आई ते ठोक के विरोध किया, बिल पास नहीं हो सकिया। हुण ताजा तरीन मानसून का सैशन होके हटिया, उहदे विच चर्चे सी कि उह बिल लिआंदा जाएगा, परंतु लिया के की करना, फिर ठीक जाना है। हुण दो चीज़ां जिहड़ियां प्रभ संतू जी इशारा करदियां कि इधर नूं गल जा सकती है, भाव कि भारतीय जनता पार्टी मुड़ बिल लिया सकती, उहदे विचों एक चीज़ इह आ कि जिहड़ा मानसून अजलास है, आम तौर पर की हुंदा है, जदों खत्म हो जाता, समाप्ति हो जाती, तो फिर उहनूं विधिवत कानूनी तौर पर उहनूं समाप्त करना हुंदा है, जबकि अजे तक वह मुलतवी शब्द है, अजे उन्हों रद्द खत्म नहीं किया, अजे तक मुलतवी किया स्पीकर साहब ने, उन्होंने बकायदा जरा प्रवानगी लैके राष्ट्रपति तो समाप्त करना हुंदा, वह नहीं किया। इस करके इस गल का खदशा आया कि जिहड़ा मानसून सैशन वो किसी दिन भी दोबारा बुलाया जा सकता है। हुण उहदे विच जिहड़ी अगली चीज चर्चा च है कि भारतीय जनता पार्टी हुण एक नवां ढंग लभ रही है कि पंजाब वर्गे सूबे जां दक्षणी भारत के सूबे जिहड़े इतराज कर रहे इस बिल के उपर, उन्हां नूं किवें तैयार किया जाए। उहदे विच पता लगा कि एक नवीं जगाड़बंदी, वो कहिंदे चलो जी तुसीं इह कहिंदे कि आबादी के हिसाब के नाल यूपी नूं ज़्यादा फायदा हो जाणा, मध्य प्रदेश नूं ज़्यादा फायदा हो जाणा, असीं आबादी के हिसाब के नाल सीटां नहीं वधाउंदे, असीं जिस सूबे च जिन्नियां सीटां विधान सभा दीआं उस हिसाब के नाल वधा दिंदे हां। हुण जिहड़ा उहनां दा तर्क है वह इस गल का जवाब तो हो गया, पहला लगता सी पंजाब नूं कि सानूं घाटा पै जाणा, यूपी नूं फायदा हो जाएगा, मध्य प्रदेश नूं फायदा हो जाएगा, महाराष्ट्र नूं फायदा हो जाएगा। हुण जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी नवां तर्क लैके आ रही, वह कहिंदी ना जी ना, असीं जिन्नियां विधान सभा दीआं सीटां उहदे हिसाब दे नाल लोक सभा दीआं सीटां वधावांगे उसे एवरेज दे नाल पूरे भारत विच। उन्हां ने एक नवां तर्क खड़ा कर दिता है। हुण इह जिहड़ा तर्क भारतीय जनता पार्टी वाले पासिओं अजे कानूनी तौर पर तां नहीं कोई खरड़े दे रूप च सामने आया, परंतु राजनीतिक तौर पर गल सुरखियां च आ गई है। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਆਬਾਦੀ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 850 ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 543 ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ।
4: ਰੋਕੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਯਾਰ?
5: ਓਏ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
4: ਵਾਹ ਯਾਰ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਈ ਮੋਨਾ ਜੀ ਦਾ।
5: ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,
6: ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੋਰ ਯੂ ਦੀ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ।
5: ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-509-1509 ਤੇ।
6: ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਫਰੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੋਰ ਯੂ,
5: 416-509-1509
6: ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ insuranceforyou.ca।
7: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ LAL ਲਾਈਟ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੈਂਸ ਸਰਜਰੀ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੈਂਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਰਜਨਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਕੰਫਰਟ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਸੇਫ, ਸਮੂਥ ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਕੈਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਲੂਮੀਆ ਆਫਿਸਿਸ ਇਨ ਵੌਨ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਬੇਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਘੇੜਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰੋ punjabi@lumia.io, punjabi@lumea.io, 289-982-9597, 289-982-9597।

बहुत लोग खूबसूरत मुल्क सीए चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। ये कैनेडा दे सुन रहे हो इस समय अपने रेडियो सैट्स के उ ट्रांजिस्टर्स इंटरनेट की मदद के नाल ओंटारियो दे अलग अलग शहरों के सारे 400 सीरीज हाईवेज 1000 किलोमीटर के रेडियस के ईस्ट वैस साउथ नॉर्थ तुसी जिथे लगभग होर चार या पांच फ्रीकुएंसीज दे राही साउथ एशियन प्रोग्राम सुनते हो पर लोकल सुनते हो पर लोकल तो बाद अगर कोई सुन रहा है सानू एम 530 सुन रहा लंडन किचनर वाटर कैम्ब्रिज का जिते असं दावा करते हैं एक्सकलूसिविटी जो सुन रहे हो तुसी उत्थे सानू नाइग्रा फॉल तो लैके बैरी तक और सानू तुसी ओशवा तो लैके बेलवल तक ईस्ट दे विच नॉर्थ ईस्ट दे विच सानू ओटवा नू जांदे आ तुसी लिंडसी पीटरब्रो तक सुन रहे हो तो इस रेडियस के तकरीबन कई हज़ार लोग जोड़े है जो लख की गिनती ने हज़ार सुन रहे होंगे ने ते कई हज़ार लोग लगभग 80,000 तो 1,00,000 लोग जोड़े आ तकरीबन सानू सुन रहे होंगे ने ते आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा चढ़ती कला वाला नर पाओ नरवैर रहेगा मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे। चलिए फिर एक सफर दे वाल बहुत खूबसूरत पर थोड़े साथ दे नाल

0: September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देती उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा वे आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 6474481000.
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी

Brampton या फिर तीसरी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569906

0: मिड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टांडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरा होएगा और आज का दिन भी अच्छा चल रहा होएगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के 1 बजे वतनों दूर तुहाडे लई पेश किया जाएगा, हिंदुस्तान तो खबरां होणगियां। छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है। अज 6:32 ते सूरज आया 8:07 ते चले जाना। मामा चांसो अज 6:39 ते शाम नू आएगा 2:30 ते उन्हें चले जाना। अज दा तापमान 23-24 डिग्री तक रहेगा। सारा दिन बदलवाई ना हल्की हल्की बारिश सारा दिन पैंदी रहेगी। कल नू 26 डिग्री तापमान, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड ते हल्की हल्की बारिश पैण दे आसार नजर आउंदे ने। बुधवार नू भी कुछ ऐसा ही मौसम है, तापमान 27 डिग्री। थर्सडे नू भी ऐसा ही मौसम है, तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नू भी ऐसे मौसम है, लेकिन थंडर स्टॉर्म चखड़ चोले काफी कुछ होएगा, तापमान 26 डिग्री। संडे सैटरडे नू जाके सूरज चमकेगा, तापमान 25 डिग्री रहेंगे। ब्लूज आले कल 8 दे फर्क नाल यंकी तो हारे और इहदे नाल नाल अज छुट्टी है। कल कैंसर सिटी रॉयल नाल उहनां दे मैच होणगे। उधर इंग्लैंडिया ने यूक्रेन नूं कहा भी कोई ना मित्रा असीं तेरे नाल हां, ते उस गुस्से जाके जेड़ा मास्को है उन्हें आपदा जेड़ा अंबेसडर यूके तो वापस सद लिया है। इंडिया का मैच होया क्रिकेट का, श्रीलंकन ने बनाए 8 रन 2 विकटा ते, लेकिन उस तो पहला इंडिया आलिया ने 503 रन बनाए सीगे 9 विकटा ते। अजकल साइकिल मोटरसाइकिल सजे खबे भजाई जाते हैं, लेकिन हैमिल्टन दे विच सैटरडे वाले दिन शाम जे नूं एक गड्डी विच एक साइकिल आला टकराया, उस बेचारे की मौत हो गई। AI टेक्नोलॉजी डिपेंड करता किहड़े पासिओं तुसीं यूज करदे हो, चंगी भी है कई कारण करके, जिहड़े नकली रीलां जां बना बना चढ़ाउंदे AI नाल ओह माड़ी भी है। फॉर एग्जाम्पल साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी वाले ने दस्या कि एडवांसिंग न्यू आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस नूं यूज करके, इन्हां दे टूल्स यूज करके एक नवी जिहड़ी ड्रग बना रहे ने जिहड़ा कि कैंसर नूं छेती रिकवर करन विच कवर करेगा।
1: मिरर्स फ्री विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक, कॉल 9056711800 905-671-1800।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: आ भेने खरीद लिया गहने?
4: किथे छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना।
3: ले ए वी गल कोई कहण दी है, सोना तो सोना ही हुंदा, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
4: गल ता तेरी सही है भेन, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन?
1: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स दे स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच थानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स, कॉल 9052308800।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 जा quicktrucklube.com, QTL because we care.
6: Truck you. Are you ready?
0: टिक्का जंक्शन लई 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इन्हां दे बैंकुएट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040 647-429-4040।
7: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
8: Chintu putte?
9: Haan ji madam ji.
8: Mainu eh dass ke tu vadda ke tere pita ji vadde?
9: Madam ji main.
8: Murkha oh kive?
9: Madam ji dekho na, main hun apni mummy naal nahi samda par mere papa je vi samde aa.
8: फिट्टे मुतेरे

0: 12 साल मज्जा चलाइया सी, मैं 12 साल हो गए घर चारियां।
1: ये है साडे पिंड दी सत, इत्थे लोग दिलां च वसदे ने।
2: आ जाओ सूबेदार साहब।
3: आ गए जी, आ गए।
2: राजा अपना देख लो अजकल उचिया भावां ते।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: ना करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
3: तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
4: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
3: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
4: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
5: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
4: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
5: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
4: 416-509-1509
5: और विजिट insuranceforyou.ca।
6: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets Nepal de vich Toronto to Delhi Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne ja tusi visa services Nepal de vich puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection open
7: Je mainu yaar na mile te mar jaawa Je mainu pyaar na mile te mar jaawa
8: What's up everybody, this is Jasmine Sandler te tusi sun rahe ho Vatnon Dur with Sukhi Nijjar

खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने की बात ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।

0: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो ता ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीयां चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
1: जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है जलेबियां पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां स्वीट महल दी वेज नॉनवेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉबिको स्वीट महल ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट
2: वे जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले लेनिया होन या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 905-678-1200
3: जी हाँ चांदी के फैंसी सेट चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल
4: इतनी बस नहीं जेंट्स ले चांदी दे कड़े चांदी दे चेन ते चांदी दे ब्रेसलेट
3: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
4: गोर एंड अवनीजर दे इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट
3: 647-339-3521
4: 647-339-3521 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट
5: जी दोस्तों तुसी जुड़ चुके हो प्रोग्राम सारंगे दे नाल मैं तुहाडा दोस्त अते होस्ट जगजीत महल इस प्रोग्राम विच गल्लां बातां होणगीआं गीत संगीत होवेगा स्पोंसर वाली जानकारी दित्ती जाऊगी पंजाब दी धरती तों सुवन सिंह टहणा जी पंजाब दीआं नवीआं ते ताजीआं खबरां लैके भी पेश होणगे अज दा प्रोग्राम जिहड़ा साडा हैगा जूनी ग्लोबल तों लाइव ऑन लोकेशन कीता जा रिहा हैगा ते राजवीर बोपर इज लाइव ऑन लोकेशन पहुँच चुके ने उहनां नूं भी आपां अगले लिंक दे विच मिलदे आंगे ते जूनी ग्लोबल दे उपर की नवां चल रिहा हैगा की पंजाब गवर्नमेंट दे ग्रांट दे संबंधी की अपडेट नवीं आई ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਟਿਕਟ ਮਾਸਟਰ ਡੋਟ ਕੋਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम समाप्त करने का समा चुक्या। हुण तुसीं सुणोगे देश प्रदेश पर देश प्रोग्राम। तुहानूं आटो इंश्योरेंस की जरूरत है, तुहानूं होम इंश्योरेंस की जरूरत है, तुहानूं कमर्शियल इंश्योरेंस की जरूरत है, तां तुसीं मेरे नाल संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर नोट कर लो। साडे कोल बहुत सारे इदां दे ग्रुप हुंदे ने जिहदे विच असीं तुहानूं बहुत भारी डिस्काउंट दवा सकते हैं। कोई 10%, 15%, 20%, ईवन के 25% तक भी डिस्काउंट हुंदे ने। मेरा नंबर नोट करो, 6476278820, 647 27 88 भी उपर तुम मेरे संपर्क कर सकते हो। तो मैनू देवो इतनी इजाजत, रब रखा, सत श्री अकाल।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: लखा दिला दी धड़कन द सुपरस्टार आमी वेयर Sound Live and Cellular Point present AmiWare Live in Toronto. August 30th at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo Ready Hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
6: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: सेकंड मॉर्गेज या रिफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
2: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905-564-6444
1: 905-564-6444
2: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो